वस्तु अंदर वस समावे दूजी होए पास। साहिब से ती हुकम ना चले कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होए नानक सरत वगास महला दूजा। नाल आने दोस्ती वडारू सो ने पानी अंदर लीक जो तसदा थाव ना थे महला दूजा। होए आना करे कम माण ना सके रास जे कथंगी करे।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहि सहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत त्व सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जनक राज बरताया सत युग आलीना गुर सबदे मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीव साज सत गुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीना विसर नाही दातार आपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए विसर नाही दातार अपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए सुन यार हमारे सज्जना एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिरों खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जै प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया आठ पहर निकट कर जान प्रभ का किया मीठा मन एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पगशार संत रहत सुनहो मेरे पाई
वाकी महिमा कथन न जाय। त्यक्त जलंग नह जीव मीनंग नह त्याग चात्रिक मेघ मंडल। बाण बेदंच कुरंक नादं आलबंधन कुसुम वासन। चरण कमल रचंत संत नानक आन ना रुचते। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले। राखहु रखनहार दयाला नानक करके गोले। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपना। तान मान होए निहाल जा गुर देखा सामने। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पात सा माल जनम जनम दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहदा। जिस पास बैठिया सोहिया सबना देसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहदाहु। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु। सत

श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोकं संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है संत उद

निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चंद न सरद रोता मूल न मिटाई काम शीतल थीव नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जान सोना परताप गोविंदा।

मीन की ना कटै रुच दीपक प्रगास कटै प्रीत ना पतंग की कुसम सुवास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़त आकाश आस कटे ना बेहंग की कटा कन कूर मूर चात्र कृदय उलास नाद बाद सुन रत कटे ना कुरंग की तैसे प्रिय प्रेम रस रस कर साल संत कटते न त्रिस।

अंबर आखा हो नास पाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरणाख सफारे कर आज, पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। छीनत वस्त्र दीन

0: गए मसकत का,
1: नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किश तेरे बस तेरा घर पला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, माण महता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसै जत कता, नानक।

पौड़ी वड़ी हूँ वडा पार तेरा मत बार रंग रंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जानदा सब किस तेरे वस तेरे कर पला तेरे करनन वदाई तुद

कछुः कंचन पह्यो शब्द गुरु श्रवण सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख बणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन माणक करे ज्ञान गुर कहयो बीचारे कठो श्रीखंड सतगुर किया दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पश परेत सुर नर पए जिता समुंद सागर नीर भरिया तिते औगुण हमारे दया करो किश मेरे उपाव डुबदे पत्थर तारे जीअड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाण सुख होवै दिन राती डंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सा सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाह जिस पास बैठिया सो

आद्यंत प्रभ सदा सहाय। तन हमारा मीता रहा, मन बिलास पै साहिब के, अचरज देख बढ़ाई।

अमृत षाढ़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखहु शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखहु शरणाई, सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सो भये। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफ तख समदी, नूर अर सो कुर सो चटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, हो सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु, साहिब जी तनासरी, महला पंजवा। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे रखै अपने को, सास सास प्रतपाले। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे रखै अपने को, सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यों

मन विलास पाए साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई मन विलास भय साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाश नै भगत वशल अनाथ नाथे शरण नानक पुरखिया चित्त है। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सात गुर पूरा फिटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया काले बलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ पहे सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का हुए बिचारो तित घर गावह सोहला सिवरे हो सिरजनहारो तुम गावहो मेरे निरपहो का सोहला हाँ वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दन कीमत ना पवै ते सदाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला श्या कर श्या गुर श्या उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ विसोए चस्या घड़िया पहरा थित्ती वारी माहो हो आ सूरज एको रोते अनेक नानक करते के वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्या नलो पवन चवरो करे सागल बानराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत फेरी रहाओ
सह सतावन नन नयन हह तोहे कौ सह समूरत नन एक तोहि सह सपद बिमल नन एक पद गंध बिन सह स्तव गंध एक तोहि सह सपद बिमल नन एक पद गंध बिन सह स्तव

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो, सर्व सुख हर

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग किरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे। जो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख अवगुण मेरिया। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिकै बिकखार। माया मोह परम पह पूले, सुतदा रास्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटा। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरना, राखो सरना। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, संत कर चौथा। धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज।

बंधन बंद पुआए सोए पया कीर्तन चे सब को नच नच हस है चल है से रोए उड़ न जाही सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन

जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण खत्री शब्दम सूर शब्दम सूदर शब्दम प्राकृत है सर्व शब्दम एक शब्दम जे

पौड़ी पड़िया होवे गुनाहगार तो उम्मीद साधना मारिए जिहा घलै घलना ते वेहो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दरगह गया हारिए पड़िया त्यो मियां विचार के विचारिए मोह चलै सो के मारिए मोह चलै सो के मारिए।

हर रसन बसाया, गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पाया। गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आया। बड़ भागी उन मानिया रिद शब्द बसाया।

0: खेल गुड़ो क्यों हर राय संतोख समाचर्यो बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखान्यो गुरु नानक अंगद वर्यो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजो नी संभव पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगय गैन ब्रह्मान दहन सेतल सुखदातो असंभो उदव्यो पुरख पूरन बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो।
1: जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोह जस बक्ता कल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुर मत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समय उदार अहमेव निवारण महादान सत गुर ज्ञान मन चाव न हुट सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नन खुट गुर रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदोया तान्यो गुर अर्जुन कल उचर तेरा जोग रस जान्यो।
2: पै निरपो मान्यो लाख में अलख लखायो अगम गोचर गत गभीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सारसो पर परायो गुर गम परमान अजर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन का लुचर तै सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर शब्दों में निवार्यो पंचाह निदल्यो सुन सह निज कर सहार्यो हर नाम लाग जाग उदर्यो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन का लुचरे तें जन के कलस दिपायो।
3: सोरठे गुर अर्जन पुरख परमान पार्थो चल नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार।

0: जग उदरियो जगत उदारन नाम सतगुर टुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी जोत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन।
1: सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत।

जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों अपर परम पर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व में।

0: जग और न यहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो हे पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताछ्रदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदारन बसह संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने आओ भयो तह समसर सोई धरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पार पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रताख्य हार।
2: अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बच है वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर ढुले नाम अमृत मुख लिया गुर अर्जुन शेर सतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
3: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस कियो सुर देव तोह जस जय जय जंपै असुर गे ते भाग पापिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दा जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो।
4: एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियाता तास चरण लै दिदे बसावो

साहिब जी जय तसरी महला चौथा कार पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद

हम अंधोले ज्ञानहीन अज्ञाने क्यों चल है मार्ग पंथा हम अंधुल कौ गोरे अंचल दीजा जन नानक चल है मिलन था।

हम अंधले का गोर अंचल दीजा जान नानक चलहा मिलंथा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जैत श्री महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हीर रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा गुर नाम दियो रेन लाथा।

साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सच समावे। ऋग कहे रहे प्रभुर राम नाम देवा मैं सूर नाय ले प्रचित जाए नानक तो मुखंतर पाए। जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया। काल में वेद अथर्वण हुआ ना कुदाई अलहो पया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पटानी अमल किया। चारे वेद होए सचियार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ।

पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईयां आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगण भिख ना पाएंदा दर मंगण भिख ना।